0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण हिमखंड फट जाने से ये आपदा आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं के 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस चुनौती के सामने नेपाल और उसके लोगों के साथ खड़ा है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है 9779851316807 और 9779701075000। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने लापता लोगों की खोज और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पीपल्स आर्म्ड पुलिस की शिगाजे टुकड़ी के कुल 145 अधिकारियों और सैनिकों को आपातकालीन प्रतिक्रिया अभियानों में सहायता के लिए प्रभावित सीमा बंदरगाह पर भेजा गया है। नेपाल की यात्रा पर गए कोलकाता के 32 लोग अचानक आई बाढ़ में लापता हो गए हैं। वे मानसरोवर यात्रा के लिए एक ट्रैवल एजेंसी द्वारा आयोजित समूह में गए थे। इस समूह को कल नेपाल तिब्बत सीमा पार करनी थी, लेकिन अचानक आई बाढ़ से उनसे संपर्क टूट गया और अभी तक किसी का कोई पता नहीं चला है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है, वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
1: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
2: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देशभर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। सरकार ने आगामी महीनों में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। वीर चोटरानी और विलविन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट क्वाश ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। ये दोनों भारतीय खिलाड़ी आज सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साहिरा मुज्तबा।

0: तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूँ, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खेल राष्ट्रीय प्राथमिकता और युवा सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के अंतर्गत मेरा युवा भारत ने आयोजित किया। देश भर में इस कार्यक्रम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले के दो दो कॉलेजों के युवाओं ने भाग लिया। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
2: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से यह आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हिंदी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। भारत ने कल नेपाल के लोगों की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री और आवश्यक दवाइयां भेजी थी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज हल्की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 77,273 पर और निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 24,158 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said the government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century. He said, from sports universities to modern training centres, an ecosystem is being developed across the country where talent receives support at every stage. Addressing the Khelo India dialogue through video conferencing today, Mr. Modi said sports is not limited merely to winning medals, rather it is a mission to unite India's sporting prowess and youth power in the building of a developed India.
0: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूँ, तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का
2: नमस्कार,
1: हेल्दी नमस्कार।
2: तो ठीक है, आपका नमस्कार है तो साथ में मेरा भी, यानी कि आरती श्रीवास्तव का भी, सभी सखियों को, सभी सखाओं को और दीपा जी को नमस्कार।
1: आरती, तुम्हें भी हमारा नमस्कार।
2: बिल्कुल,
1: और आप सब, हम सब सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें, ताकि आगे का जीवन हर दिन खुशियों से बीते, है ना।
2: बिल्कुल,
1: यही चाहत होती है। एक चीज हमारे सभी श्रोताओं और सखियों से पूछना चाहते हैं, हम हमेशा कहते हैं हेल्दी नमस्कार, तो बताइए अपने हेल्थ का, अपनी तबीयत का कौन कौन खूब अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर दिए हैं या करते हैं, या कोई थोड़ा सा एक पॉजिटिव अगर बदलाव आया है तो वो भी जरूर बताइएगा।
2: बिल्कुल, और साथ ही हम जो

0: लेके आए उसके बारे में बता देते हैं। आज हम बात करेंगे, आज जो है विश्व झील दिवस है,
1: यानी कि वर्ल्ड लेक डे। हाँ जी,
0: तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं और हम चाहेंगे हमारे जो श्रोता हैं वो भी अपने सारे विचार हमारे साथ में साझा करें। और साथ ही हम बात करेंगे कहानी पद्मश्री के अंतर्गत सिंधु ताई सपकाल की।
1: हाँ,
0: बहुत ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व है जिनका।
1: बिल्कुल, इतनी ज़्यादा उन्होंने परेशानियों को झेला है और बहुत कठिनाइयों से और कष्ट भरा जीवन उनका रहा है, तो एक बहुत अच्छी उनकी प्रेरणादायक कहानी, ताकि हम जो ये छोटी छोटी शिकायत करते हैं ना, तो कहीं उसको हम साइड में रखें कि छोटी छोटी सी बातों में हम नाराज़ हो जाते हैं या कभी चिढ़ भी जाते हैं, तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयों को भी सामना करते हुए कैसे एक व्यक्ति, और उसमें भी विशेष तौर पर महिला जब आगे बढ़ती है तो सबका जो सर है ऊपर उठ जाता है।
0: बिल्कुल, और साथ ही हम बात करेंगे बढ़ती उम्र के साथ सुरक्षित भविष्य, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं।
1: जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आजकल जो हम देख रहे हैं कि बच्चे बाहर हैं, माता पिता वहाँ हैं जहाँ उन्होंने हमेशा नौकरी की है, या कोई उनका घर है गांव में या कोई होम टाउन है, वहीं रहना पसंद करते हैं। अब बच्चे तो चाहते हैं वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे मम्मी पापा आ जाएं। मम्मी पापा का ये कहना होता है कि नहीं, हमें तो बस भाई जहाँ रह रहे हैं वहीं अच्छा लग रहा है, आप लोग बस आते जाते रहिएगा।
0: क्योंकि ना होता भी है ना, जब जो बच्चे हैं वो अपने जो करियर है उसकी वजह से नहीं आना चाहते, और जो माता पिता हैं वो इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि वो वहाँ पे हमेशा से रह रहे हैं, वहाँ पे उनका पूरा सब दोस्त हैं, सब जो जानने वाले लोग हैं, परिचित हैं, तो अपने अपने कारण हैं, इस वजह से वो अपनी अपनी जगह पे रहना चाहते हैं।
1: लेकिन ऐसे में कितना अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है, कैसे सुरक्षित भी रहें और सतर्क भी रहें, थोड़ी बातचीत हम उस पे करेंगे।
0: बिल्कुल, हम चाहेंगे हमारे जो सखा हैं, जो सखियां हैं, वो भी अपने विचार हमारे साथ में साझा करें इस विषय के ऊपर।
1: बिल्कुल, क्या कोई ऐसे हैं हम में से, ये सखी सहेली परिवार में से, कि कोई अकेले रह रहे हैं या बच्चे उनके दूर हैं, या वो नहीं जाना चाहते हैं, या उनके बच्चे कहते हैं उनसे बार बार कि आप अब हमारे साथ ही रहिए, ऐसी कोई अगर घटना हो गई है या कोई अनुभव है उनका, तो हमारे साथ अवश्य साझा करें।
0: बिल्कुल, और साथ ही हम बात करेंगे कुछ अच्छी अच्छे टिप्स की जो बारिश में सीलन की दुर्गंध को भगा सके, जो बहुत बड़ी समस्या आजकल।
1: ये बात तो है आरती, कपड़े आप कितने भी सुखा लो लेकिन वो एक अलग से गंध सी आने लग जाती है, और जो हम जहाँ पे रोज की चादर तकिए वगैरह के लिहाफ ये सब जो रखते हैं ना, उनमें से भी एक अजीब सी अलग सी गंध आने लग जाती है। तो हमें लगता है हम सब तो साफ सफाई से रखे हैं, नैपकिन वगैरह जो हम रखते हैं हमें लगता है धुल धुला के सब कुछ अच्छे से रखा हुआ है, फिर भी ये क्यों एक गंध आ रही है, तो इस पे थोड़ी सी हम बात करेंगे।
0: बिल्कुल, तो ये सारी बातें तो हम करेंगे लेकिन एक गीत सुनने के बाद।
1: चलो भाई, अब आरती ने कहा है पहले गीत सुनना चाहती है, तो चलिए सखियों की भी फरमाइश होगी जरूर।
0: जी,

0: भाई जब इतने सुरीली शुरुआत हो जाए ना आरती, तो एकदम लगता है एक घंटा हमारा तो बहुत ही सुरीला और सजीला सफर होगा।
1: बिल्कुल, और सुरीली बोलियां ही बोलनी चाहिए। हाँ, कड़वी बोलियां बोलने से सिर्फ दुश्मनी होती है।
0: देखिए ऐसा नहीं है हमेशा की दुश्मनी होती। अब माँ बाप तो देखो माता पिता या अपने बड़े भाई बहन होते
1: हैं,
0: वो कड़वाहट नहीं कहते, लेकिन कभी कभी जब नहीं मानता ना छोटा, तो फिर उसको कड़वे बोल या कड़े शब्द बोलकर,
1: कड़े शब्द बोलने
0: है ना, बोलने पड़ते हैं जी। लेकिन हम यहाँ पे बात कड़े शब्दों की नहीं कर रहे, हम कड़ी कठिन परिस्थितियों में कैसे जिया जाता है वो जानते हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, सिंधुताई सपकाल की। तो देश ने हमारे समय समय पर ऐसी महान विभूतियों को जन्म दिया है आरती, जिन्होंने अपने संघर्ष और सेवा के से समाज को नई दिशा दी है ना। ऐसी एक महिला जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, नाम है उनका सिंधुताई सपकाल, जिन्हें प्यार और सम्मान से अनाथों की माई भी कहा जाता है। उनका जीवन संघर्ष, ममता, साहस और मानवता की अद्भुत कहानी है।
1: बिल्कुल, और हम उनकी बात करें तो उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पिंपरी मेघी गांव में, और उनका बचपन बहुत ही कठिन परिस्थितियों में भी

0: दुदाई सपकाल, जिन्हें प्यार और सम्मान से अनाथों की माई भी कहा जाता है। उनका जीवन संघर्ष, ममता, साहस और मानवता की अद्भुत कहानी है।
1: बिल्कुल, और हम उनकी बात करें तो उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पिंपरी मेघी गांव में, और उनका बचपन बहुत ही कठिन परिस्थितियों में भी

0: ये संघर्ष आगे बढ़कर उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बना। जब उन्होंने अपने जैसे बेसहारा और ऐसे बच्चे जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें देखा, तो उनके भीतर भी कि जो माँ की ममता होती है वो जाग उठी। उन्होंने सोचा कि जिस तरह उन्हें अपने जीवन में अकेलेपन और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है, वैसे किसी बच्चों को इस तरह का सामना न करना पड़े। तो उन्होंने कभी उन्हें ऐसा लगा कि कभी उन्हें अकेला छोड़ा जाना नहीं चाहिए। उन्होंने बेसहारा बच्चों को अपनाना शुरू किया और वे उनके लिए केवल आश्रय नहीं बनी बल्कि माँ बन गई।
1: बिल्कुल, और धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ती गई। सिंधुताई ने अपने जीवन को उन बच्चों के नाम कर दिया जिन्हें समाज ने सहारे के बिना छोड़ दिया था। वो बच्चों को भोजन देती, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करती और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती थी। उनके लिए हर बच्चा उनका अपना बच्चा था।
0: और ये जो सफ़र था आरती, ये आसान नहीं था, क्योंकि पहले उन्होंने धन अर्जन किया, उसमें से कुछ उन्होंने बचाया और फिर आगे चल के और कई जो समाज सेवी संगठन है उनसे भी उन्होंने मांगा कि मदद मांगी कि भाई मेरे साथ इतने सारे बच्चे हैं और मैं अकेली हूँ, तो मुझे ज़रूरत है धन की और अलग अलग सुविधाओं की। तो सब लोगों ने आगे बढ़ के उनका ये उनके लिए मदद का हाथ बढ़ाया। और उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि माँ होना केवल जन्म से नहीं बल्कि ममता और जिम्मेदारी निभाने से भी होता है।
1: बिल्कुल, और सिंधुताई सपकाल ने हजारों अनाथ और ज़रूरतमंद बच्चों को माँ का प्यार दिया। वो बच्चों को शिक्षा दिलाने के साथ साथ उनके भविष्य को संवारने के लिए लगातार प्रयास करती रहीं। उनके आश्रम में पले बड़े अनेक बच्चे आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और शिक्षक बने, और कुछ ने स्वयं समाज सेवा का रास्ता चुना, जैसे कि उनके साथ में अच्छा हुआ था, वैसे उन्होंने भी सोचा वो भी किसी के साथ में अच्छा करें।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने सेवा को कभी दया का विषय नहीं बनाया। वे बच्चों को कमजोर समझकर उन पर उपकार नहीं करती थी बल्कि उन्हें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी। और हमेशा उन्होंने कहा कि जीवन जीने का एक अवसर आप अपने लिए ढूंढिए।
1: बिल्कुल, उनके कार्यों को देश में विदेश में सम्मान मिला। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया जिनमें पद्मश्री भी शामिल है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार उन बच्चों का प्यार था जो उन्हें माई कहकर पुकारते थे।
0: जी, और सिंधुताई सपकाल ने 4 जनवरी 2022 को इस संसार से सदा के लिए विदा ले ली। लेकिन उनकी ममता और सेवा की कहानी आज भी जीवित है। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि मन में साहस और दूसरे के लिए संवेदना हो तो एक व्यक्ति भी समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
1: बिल्कुल, और उन्होंने लाकर दिखाया।
0: और देखिए, ये तो हम आज सिर्फ उनको याद कर रहे हैं, लेकिन जब असल में हुआ होगा तो कितना कठिन रहा होगा वो सारी परिस्थितियों को सामना करना। बच्चे इतने सारे हैं, खाने के लिए भरपूर भोजन नहीं है, या कभी कभी हर रोज का दिन चलाने के लिए उतना धन नहीं है, तो बहुत कठिन होता है जब ऐसे दिन आते हैं। लेकिन माँ की शक्ति कुछ एक अनोखी और अलग ही होती है ना, वो अद्भुत होती है, कुछ अपने बच्चों के लिए तो कर ही जाती है।
1: जी हाँ,
0: लेकिन हम क्या कर सकते हैं?
1: एक गीत सुने।

0: भाई ऐसा तो होता है कोई एक व्यक्ति जीवन में ना जिसको देख के मन का संयम टूट जाता है।
1: बिल्कुल।
0: कोई सखी भी हो सकती है।
1: हाँ, और क्या, ऐसे तो
0: पता है आरती एक हल्की सी शर्मिली से मुस्कान दे रही है साथ।
1: जैसे कि दीपा जी को देखकर।
0: अच्छा।
1: बिल्कुल। और हम अपने जो श्रोता हैं उन्होंने जो लिखा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि उन्होंने एक हमारे श्रोता है वो जो लिखते हैं कि सिंधु ताई सपकाल को अनाथों की माँ कहा जाता था जिन्होंने अपना पूरा जीवन हजारों अनाथ बच्चों के पालन पोषण और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया।
0: जी, और एक और ये संदेश आया है। ये इन्होंने कहा कि पद्मश्री प्राप्त सिंधुताई सपकाल को मैंने पूरा कार्य मैंने उनका सुना तो है, ये देखा भी है। वो बहुत ही मधुर वाणी की महिला और अनाथों के प्रति उनके जो दिल में वात्सल्य भाव था उनका, वो देखते ही बनता था। उनकी बेटी ममता सपकाल मेरी छात्रा रह चुकी हैं जो अब उनकी माँ का काम आगे बढ़ा रही हैं। और एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि सिंधुताई ने खुद का दर्द भुलाकर उन लावारिस बच्चों को अपना उन जरूरतमंद बच्चों को अपना बना लिया और उनके लिए अलग अलग जगह से कभी पेट भरने के लिए

0: जुगाड़ उन्हें लगानी पड़ती थी, कभी कहीं से मांगना पड़ता था, तो कहीं उनको एक चीज़ बोलना पड़ती थी कि मेरे बच्चे भूखे हैं। तो उन्होंने अपने जीवन में 1400 से अधिक अनाथ बच्चों को गोद लिया और उनका भविष्य संवारा। उनके द्वारा संचालित संस्था और अनाथालय में बच्चों को शिक्षा, आश्रय और संस्कार दिए जाते। उन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा भी कहा जाता है।
1: बिल्कुल, एक और संदेश है हमारा। तो हमारी श्रोता जो कहती हैं कि आज सिंधु आई को आपने याद किया, इसलिए वो धन्यवाद कह रही हैं। और सिंधु आई हमारे वर्धा ज़िले के पिंपरी मेघी गांव में जन्मी थी और वो अनचाही संतान थी, इसलिए उनका नाम चिंधी रखा था। चिंधी मतलब बिना काम का बारीक सा टूटा हुआ टुकड़ा। आई ने, यानी अगर आपको आई का मतलब नहीं पता, वैसे तो हमें पता है आई का मतलब। और वो पति ने भी उनको निकाल दिया था तो जब वो गर्भवती थी, और आई ने अपनी अपनी जचकी खुद अपने हाथों से की थी।

0: जो उतार चढ़ाव आते हैं अपने जीवन में, हर एक के जीवन में आते हैं, कहीं किसी को किस रूप में, कहीं किसी को किस रूप में, तो उनकी उनका जीवन तो हमें यही सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हो डट कर उसका सामना,
1: हार नहीं मानना चाहिए
0: जी, बिल्कुल।
1: एक गीत सुन ले,
0: चलो एक गीत सुन लेते हैं।

0: बड़ा ही सुंदर प्यारा सा गीत है ये वाला, है ना। और अच्छा, आगे की बात बताने से पहले साथियों एक सवाल, सवाल ये कि क्या आप कुछ प्रसिद्ध झीलों के नाम बता सकते हैं, और पर्यटन के लिए आप कहाँ कहाँ कहीं पे घूमने गए थे, कोई प्रसिद्ध हमारे देश की झील। वैसे कुछ संदेश आए हैं जो विदेश में भी प्रसिद्ध झीलों के आसपास घूम कर आए हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। और अब हम बताते हैं कि आज है वर्ल्ड लेक डे, यानी कि विश्व झील दिवस।
1: और विश्व झील दिवस का उद्देश्य क्या है? तो दीपा, इसका उद्देश्य यह है कि दुनिया भर की झीलों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और झीलों के संरक्षण, संवर्धन और जीर्णोद्धार, साथ ही लगातार प्रबंधन के लिए उनका प्रबंधन चलता रहे, होता रहे, इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसको लोगों को प्रोत्साहित करना।
0: जी, तो 2024 में संयुक्त राष्ट्र ने झीलों के संरक्षण और लगातार विकास के महत्व पर चर्चा की और विश्व झील दिवस की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए कई चर्चाओं में जोर दिया, और फिर बहुत सारे डिस्कशंस हुए। उसके बाद 27 अगस्त को विश्व झील दिवस के रूप में इसे नामित किया गया।
1: बिल्कुल, ये दिवस झीलों की कई भूमिकाओं को मान्यता देता है, जिनमें मनोरंजन और आर्थिक उपयोग से लेकर जलवायु विनियमन तक शामिल हैं, और साथ ही हमारे लिए ताजे पानी का स्रोत भी है।
0: और जो पेयजल की आपूर्ति करती है ये ताजे पानी का स्रोत, और कृषि और कई तरह के जो उद्योग है उसको सहारा देती हैं। फिर जो जैव विविधता है उसको बनाए रखने में भी झीलें बहुत महत्वपूर्ण काम करती हैं, मछलियों के लिए, वन

0: वन्य जीवन की बात करें अगर हम, पौधों के लिए आवास प्रदान करती हैं, झीलें बाढ़ के पानी को अवशोषित करती हैं और कार्बन का भंडारण भी करती हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो कई सारी गतिविधियों के लिए भी और मानवीय गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण है झील। लाखों लोगों की आजीविका झीलों पर निर्भर है, जैसे मछली पकड़ना, कृषि है उस पर, या पर्यटन से संबंधित जो भी काम होते हैं। झील अतिरिक्त पानी को अवशोषित और संग्रहित कर सकती है, उसके आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ के प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है झीलों की वजह से। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि झीलों पर लगातार खतरा बढ़ रहा है। वो किस प्रकार का है कि लगातार बढ़ता प्रदूषण, पानी का अत्यधिक उपयोग, या फिर ठोस अपशिष्ट होते हैं ना, जो हम ऐसे डाल देते हैं, थैले वगैरह कचरा उठा के उसमें डाल दिया जाता है, या बढ़ता हुआ तापमान है, या वर्षा के बदलते पैटर्न्स जो आजकल होने लग गए हैं, उसकी वजह से जो झील का इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र, उस पर हमेशा मतलब एक सतत दबाव पड़ता जा रहा है।
1: बिल्कुल। और इसी को लेकर हमारे, जब ये आपने एक प्रश्न पूछा था दीपा कि आप कहाँ गए हैं घूमने, तो एक हमारे जो श्रोता है उन्होंने एक लिखा है, संदेश लिखा है, तो कहते हैं कि मैं अभी हाल ही में जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट घूमने गई थी। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट में कई खूबसूरत झीलें हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय नाम टीटीसी और श्लस्चुसी है। टीटीसी वो यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक झील है, जो अपने सुंदर नज़ारों और बोट राइड के लिए जानी जाती है। हम लोगों ने भी बोट राइड करके वहाँ के नज़ारों का लुत्फ उठाया, यानी अच्छे तरीके से उन्होंने झील में अच्छे से घूमा है।
0: बिल्कुल। और जो झील के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये भी देखने में आया है कि झीलों पर लगातार खतरा बढ़ रहा है, वो हमने अभी बात कर ही रहे थे। और ऐसे में ये आवश्यक हो जाता है कि झीलों के पारिस्थितिकी और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़े, उनके संरक्षण के लिए एक मिलजुल के कार्रवाई हो, जो कि उसका सब लोगों को प्रोत्साहन मिले, ताकि एक अवसर मिल सके कि हम झील के बारे में जहाँ चर्चाएं हो, जहाँ पर ये उससे जुड़ी जितनी भी परेशानियां हैं, या जो सामने जो कठिनाइयां आ रही हैं, झील का बनावट वैसी ही बने रहे, उसका इकोसिस्टम वैसा ही बना रहे, तो इस पर एक अवसर प्रदान हो सके सभी के लिए।
1: बिल्कुल। और इसी को लेकर एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि हर वर्ष 27 अगस्त को विश्व झील दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने झीलों के संरक्षण और उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 27 अगस्त को इस दिन के रूप में चुना था। और जो स्रोत हैं, झीलें जो होती हैं वो पृथ्वी पर उपलब्ध सतह के ताजे पानी का लगभग 90% हिस्सा प्रदान करती हैं। ये बाढ़ के पानी को सोखने और कार्बन को संग्रहित करने में मदद करती हैं। ये जलीय जीवों, पौधों और वन्य जीवों को आश्रय देती हैं।
0: जी। और झीलें वैसे देखा जाए तो दो भागों में भी बंटती हैं, एक होते हैं मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें। तो अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से जो झील हैं जो कि प्रसिद्ध हैं, तो लेक सुपीरियर है, और ये जो है ये लेक सुपीरियर है, ये क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कहते हैं। और रूस की भी एक मीठे गहरे झील की है जगह, लेक टिटिकाका। फिर उसके अलावा हमारे देश की झीलें हैं।
1: बिल्कुल। जैसे कि डल झील है जम्मू कश्मीर में, बुलर झील है जम्मू कश्मीर में, और पेंगोंग त्सो लद्दाख में है, जो और त्सो मोरिरी लद्दाख में ही है ये भी, और लोकटक झील मणिपुर में, और चिलिका झील उड़ीसा में, और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में। बहुत बहुत सारी झीलें हैं जो बहुत खूबसूरत भी हैं।
0: देखिए, बात बात में हम एक अंतराल लेना तो भूल ही गए, तो चलिए ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ चुके कार्यक्रम है सखी सहेली। तो झील के बारे में बातें हो रही थी, एक संदेश आया है आरती, ये कहते हैं कि हमारे शहर अजमेर में पौराणिक और ऐतिहासिक अन्ना सागर लेक है जो कि मुगल काल के जमाने का बना हुआ है, दौलत बाग और बारादरी के किनारे में स्थित है और शाम के समय में क्वींस नेकलेस की तरह नजारा दिखता है जो कि मुंबई के मरीन ड्राइव के जैसा नजारा, जो मुंबई का प्रसिद्ध है ना क्वींस नेकलेस, जब आप मरीन ड्राइव की तरफ जाते हैं तो वहां पर ये नजारा देखने को मिलता है। तो इसी तरीके का नजारा आप अजमेर के इस झील अन्ना सागर लेक में भी देख सकते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बताया जाना चाहिए देखने के लिए।
0: बिल्कुल, तो एक और जगह हमारे लिस्ट में जुड़ गई ना कि यहाँ पे भी हमें जाना है।
1: बिल्कुल, और हम बात करने जा रहे हैं
0: कि भाई जब बढ़ती उम्र होती जाती है तो जब असल में जब उम्र छोटी रहती है तो हमें लगता है सब कुछ तो हो जाएगा, सब कर लेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है, बच्चे अपने बड़े हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं बाहर, तब कहीं एहसास होता है कि इतना जल्दी जल्दी ये परिवेश बढ़ता चला जा रहा है, हर दिन से जीवन बदल रहा है, बच्चे काम के सिलसिले में या पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं, किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं या किसी दूसरे देश में, और फिर जो माता पिता हैं वो वहीं पीछे रह जाते हैं उस शहर में जहाँ उन्होंने ताउम्र काम किया हो या उनका मूल शहर या गांव वहीं हो।
1: बिल्कुल,
0: अब हो ये जाता है आरती कि बच्चे वापस नहीं आना चाहते और माँ बाप नए शहर नए परिवेश में अपने आप को ढालने में थोड़ा उन्हें दिक्कत आती है, वो कहते हैं भाई हम जहाँ हैं जिधर हैं हम तो वहीं ठीक है, तुम हमसे आ करके मिल जाया करो।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना इतनी उम्र जहाँ हमने बिताई होती है ना, तो हम वहाँ से जाके दूसरी जगह जाना फिर वहाँ पे एडजस्ट करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना।
0: बिल्कुल,
1: हमने सारा समय अपनी सारी जिंदगी उस जगह पे एक जगह पे बिताई है, तो इसके बारे में तो हम आगे बात करते रहेंगे, गीत सुन लें।
0: चलिए सुनते हैं।

0: बहुत ही
1: देखो
0: गीत था ना,
1: बहुत प्यारा। और ये जो बात होती है ना कि क्या किया जाए, बच्चे कहीं और, माँ बाप कहीं और, ऐसे में लगता है कि रुक कर सोच लिया जाए कि जब हमारी उम्र बढ़ेगी तो कैसा होगा जीवन और हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उम्र भी कोई अचानक से तो आरती ऐसा नहीं है कि बढ़ती चली जाती है, तो धीरे धीरे चलकर आती है। तो अपने सुरक्षित भविष्य की योजना तभी से हमें बना लेनी चाहिए जब एक व्यक्ति एक्टिव या उसका जो है ना सक्रिय लाइफ हो, तभी वो सोच ले तो बेहतर है।
0: बिल्कुल। और बच्चों का सानिध्य मिले तो जीवन और भी खुशनुमा हो जाता है, लेकिन अगर वो दूर भी हैं तो भी अपना जीवन सम्मान, सुरक्षा और अपनी शर्तों पर जिया जाना चाहिए। और जिंदगी की दूसरी पारी का ये समय किसी का इंतजार करने का नहीं होता, बल्कि खुद के लिए जीने की सुदृढ़ तैयारी करने का होता है।
1: तो भाई क्या क्या तैयारी कर सकते हैं हम? जैसे कि हम स्वावलंबी बनना चाहिए, यानी सेवानिवृत्ति के बाद आमदनी का एक नियमित या सुनिश्चित जरिया होना बहुत जरूरी है, ताकि किसी के भी आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उम्र बढ़ने के साथ देखो ना दवाइयों का, फिर स्वास्थ्य संबंधी या देखभाल करने की अचानक जरूरत, ये बढ़ जाती है। तो इसके लिए अपने कामकाजी जीवन के दौरान ही निवेश के पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। पेंशन योजना है या स्वास्थ्य बीमा या कोई ऐसा इमरजेंसी फंड, इस तरह का चीज़ें थोड़ी सी तैयार करके रखें, ताकि आपका जो दायरा है या जो पीछे आगे आने वाली जो जिंदगी है वो एक मजबूत रूप ले सके।
0: बिल्कुल। और इसके साथ ही सभी वित्तीय जानकारियां जैसे कि बैंक खातों के विवरण और निवेश से जुड़े दस्तावेज भी हमेशा व्यवस्थित रखें, ताकि आपात स्थिति में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
1: बिल्कुल।
0: और घर में बिल्कुल उम्र के अनुसार कुछ बदलाव भी कर लेना चाहिए, इसे भी आराम और सुरक्षा दोनों के लिहाज से तैयार करें। जैसे कि फिसलने वाले जो चिकने फर्श होते हैं, कम रोशनी वाले कॉरिडोर या असुरक्षित और ढलान वाली सीढ़ियां बुढ़ापे में बड़े हादसों का कारण बन सकती हैं। इससे सुरक्षा के लिहाज से ये बदलाव स्वयं ही आप 40 से 50 की उम्र तक आप करवा सकते हैं।
1: सीमा नहीं है, आपको लगता है कि नहीं हम थोड़ा सा चेंजेस अपने घर में थोड़ा बदल लेते हैं तो ठीक है, या आपको ऐसा लगता है नहीं हमें नहीं करना है, हमारे बच्चे आएंगे उनके सामने ही हम सब करवाएंगे, तो ये तो अपने अपने ऊपर भी निर्भर करता है।
0: घर को किस तरह से सजाना है ये आपके ऊपर निर्भर।
1: बिल्कुल।
0: इसमें उम्र का कोई लेना देना नहीं है।
1: आपके स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, कैसा आपको लगता है कि कोई सपोर्ट की या कोई ऐसे सहारे की जरूरत है, तो उस तरह की कोई चीजें, कोई अटैचमेंट फिटिंग्स वैसे आप घर में लगवा सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और यदि आप बिल्कुल ही अकेले रह रहे हैं तो अपने पड़ोसियों या कोई पुराने आपके मित्र का जो कोई ग्रुप है या कोई स्थानीय समुदाय है, एक ऐसा भरोसेमंद नेटवर्क तैयार करना बहुत जरूरी हो जाता है आरती, जो जरूरत पड़ने पर एक कॉल या आपके आवास पर आपकी मदद के लिए तुरंत हाजिर हो सके।
0: बिल्कुल। और संतानों से लगाव तो स्वाभाविक है कि भाई सभी को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, और उन पर हर जरूरत के लिए पूरी तरह से आश्रित होना ये ठीक बात नहीं है। और इसलिए अपने मन में ये भाव बिल्कुल भी ना आने दें कि ये तो बच्चों का फर्ज है कि आपको उन्हें संभालना है, और ना ही दूसरों को देकर आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि मेरे बच्चे मेरी सेवा क्यों नहीं करते।
1: बिल्कुल।
0: अब हम ये स्वावलंबी बनना
1: जी, बिल्कुल। अभी हम ये शिकायत करने लग जाएं, अरे ये तो देखो बच्चों की ड्यूटी है ना, ये तो करना ही चाहिए, उन्हें फोन तो लगाना ही चाहिए, पूछना तो चाहिए, फला दिन तो उन्हें आना ही चाहिए, क्या वो एक दिन दो दिन के लिए नहीं आ सकते, तो इस तरह की बातें करना आज के जमाने में जहाँ की बच्चों को भी जहाँ वो रह रहे हैं हर दिन चुनौतियां उन्हें अपने काम में या जो भी जिस क्षेत्र में भी वो कार्यरत है वहां पे उन्हें देखना होता है, तो माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा किस स्थिति से गुजर रहा है, उन सब बातों को थोड़ा सा रख के और घर में आप विचार विमर्श एक कर लीजिए।
0: बिल्कुल। और साथ ही आप अपने आप को इतना ज्यादा बिजी रखिए कि आपको जरूरत ही ना पड़े,
1: जरूरत ही
0: किसी चीज की
1: जी।
0: अपने फ्रेंड सर्कल को आप बढ़ाइए, लोगों से बातचीत करिए और समाज में घुलिए मिलिए, बहुत चीजें हैं करने वाली, आप जो नहीं कर पाए अभी तक अपने जीवन में उसको करिए, अपने शौक पूरे करिए और घूमिए फिरिए, बहुत सी चीजें आप जो कर सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों के साथ भविष्य की उम्मीदें क्या हैं, अपने निवास, प्राथमिकताओं और किसी भी संभावित मेडिकल इमरजेंसी के बारे में हमेशा साफ और स्पष्ट बातचीत आप करें। जब आप अपनी इच्छाओं के बारे में पारदर्शी चर्चा करते हैं तो इससे रिश्तों में किसी भी प्रकार की गलतफहमी या खटास की कोई गुंजाइश नहीं बचती, बल्कि आपसी समझ, परिपक्वता और एक दूसरे के प्रति सम्मान और अधिक गहरा जाता है।
1: बिल्कुल। अब देखिए ना, अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं आरती, तो अकेलेपन को मानसिक कमजोरी बिल्कुल ना बनने देना चाहिए। और जैसे आपने कहा ना

0: आपकी अपनी रुचि के हिसाब से और आपको जो कला पसंद है बस उन्हें अपना लीजिए और जिंदा दिली से हम जिए। और इसी से संबंधित ढेर सारे संदेश भी आए हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ हमारी जिम्मेदारियां भले ही कम हो जाए लेकिन सुरक्षित भविष्य की चिंता हमेशा बनी रहती है। सुरक्षित भविष्य केवल आर्थिक बचत का नाम नहीं है, इसमें अच्छा स्वास्थ्य, जीवन शैली, अच्छे रिश्ते, मानसिक शांति, ये सब भी शामिल है। उम्र बढ़ने के साथ संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और अपनी पसंद की गतिविधियां, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, उसमें सक्रिय रहना जीवन को बेहतर बनाता है। भविष्य सुरक्षित करने का सही समय कल नहीं आज है।
1: बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है अपने आप को आप उस हिसाब से रखें कि अपनी सारी ज़रूरतें आप खुद पूरा कर सकें। और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अकेलापन बढ़ती उम्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सामाजिक जुड़ाव ज़रूरी है। अपने परिवार, बच्चों और पुराने दोस्तों के साथ आप संवाद बनाए रखें। वरिष्ठ नागरिकों के क्लब हैं, जैसे स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं या धार्मिक या सामाजिक गतिविधियों से आप जुड़ते रहिए ताकि मन आपका व्यस्त रहे। और नई तकनीक है उसको सीखना, जैसे कि मोबाइल में कुछ चीज़ें होती हैं उनको सीखना, और साथ ही किताबें पढ़ना या कोई अपनी पुरानी आपकी जो हॉबी है, आपका जो शौक है, उसको आप पूरा कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें आपको मानसिक रूप से मजबूत रखती हैं।
0: बिल्कुल, और मानसिक एक शांति और खुशी के लिए क्या
1: गीत संगीत

तो भाई हम बात कर रहे थे कि बढ़ती उम्र में क्या किया जाए और कैसे अपना ख्याल रखा जाए। एक संदेश आया है कि उम्र बढ़ने के साथ बीमारियां और चिकित्सा खर्च दोनों बढ़ जाते हैं, बिना स्वास्थ्य बीमा के बुढ़ापे में सारी बचत खत्म हो सकती है।

0: इसलिए आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, कोई अच्छे सीनियर सिटीज़न हेल्थ इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। यह सरकारी योजनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो मुफ्त इलाज की सुविधाएं देती हैं, इनका लाभ उठाना चाहिए। नियमित जांच करवाते रहिए, जैसे गंभीर बीमारी रूप ना ले ले, कोई गंभीर रूप ना ले ले, और इसके लिए नियमित हेल्थ चेकअप और सक्रिय जीवन शैली को अपनाना ज़रूरी है।
1: बिल्कुल, और इन्होंने इतनी अच्छी अपने संदेश लेके भेजे और सबसे अपने विचार भी साझा किए और सुझाव भी दिए, तो उन पे अमल करना चाहिए। साथ ही अब हम बात कर लें कुछ टिप्स की।
0: बिल्कुल, देखो ये जो दिक्कत आती है इन दिनों में, खासतौर पे बारिश के दिनों में, कि सीलन की एक दुर्गंध सी आने लग जाती है घर में भी, हम कितना भी ख्याल रख लें, तो ऐसे में अगर हमें थोड़ा सा कुछ पता हो कि हम कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं, तो भाई अच्छी ही बात है कि घर में घुसते से अगर किसी को ऐसा लगे कि कुछ अलग सी गंध आ रही है, तो वो सामने वाले का चेहरा ही आपको दिखा देगा कि हाँ भाई कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो ऐसा ना हो, उसी के उपाय के बारे में बात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो दूर से ये दूर करने के लिए कुछ आसान उपाय हैं, जैसे कमरे की खिड़कियां और दरवाजे को कुछ समय खुला रखें ताकि हवा आती जाती रहे, दीवारों और फर्श को गीला ना रहने दें, नमी तुरंत सुखाएं, कमरे में पंखा चलाएं ताकि हवा का प्रवाह बनता रहे, और अलमारी जूते या सामान को समय समय पर बाहर निकाल कर हवादार जगह पर रखें। सीलन वाली जगह पर बेकिंग सोडा की छोटी कटोरी रख दें, यह गंध सोखने में मदद करता है, और दीवार पर फफूंद अगर आपको दिखाई दे रही है या दुर्गंध लगातार बनी है, तो आप एक प्रशिक्षित व्यक्ति की मदद लेकर सफाई उसकी करवा सकते हैं। ये संदेश हमारे एक सखी ने लिख भेजा है।
1: एक हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि कितना भी आप पेंट कराएं या कुछ भी कराएं, उसमें तो जो सीलन की महक है वो आती है, तो इसके लिए वो क्या करती हैं कि मैं सुबह शाम उसे कभी नीम की पत्तियां हैं जैसे, है ना, उसको जलाती हैं, तो इससे जो धुआं होता है ना उससे सीलन की बदबू तो जाती है, साथ ही जो मच्छर वगैरह होते हैं ना वो भी सब
0: भाग जाते हैं।
1: तो कपूर भी जला सकते हैं आप, तो ये सब चीजें करने से क्या होता है ना कि सारी नमी जो है वो सूख जाती है, नमी हट जाती है और बदबू भी सारी चली जाती है, और एक अच्छा सा एक अरोमा सा आ जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश में हमारी सखी बताती हैं कि बारिश में सीलन की बदबू से बचाव के लिए घर की खिड़कियां को खुला रहने दें ताकि नमी अंदर ना आ पाए, और हर जगह को साफ सुथरा रखें, जहां मच्छर वगैरह हैं या पानी है उन सब जगह की सफाई करते रहें, इससे घर में नमी भी नहीं आएगी और बदबू भी घर में जो ये आ जाती है सीलन की वो भी नहीं बनेगी। तो ये इन दिनों में हमें बार बार और बहुत जल्दी जल्दी घर की साफ सफाई करनी पड़ती है, ये बात तो सही है सखियों। कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे अभी दो दिन पहले ही तो कोई फला कोना हमने साफ किया था और देखो फिर से वहां पर ऐसा लग रहा है कि कुछ फफूंद सी बन गई है, या कहीं पे कुछ थोड़ा सा भी अगर कचरा या कहीं पानी इकट्ठा रह गया है कोई टंकी वगैरह में घर की, तो वो भी देखते रहना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से मच्छर बहुत ज्यादा मात्रा में फैल जाते हैं घर में।
1: एक और हमारे जो श्रोता है जो लिखते हैं कि इसको सीलन और दुर्गंध को हटाने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि शाम के समय घर में कपूर जला सकते हैं, और इससे बहुत बड़ी एक अच्छी सी खुशबू भी फैलती है, और साथ ही आप लौंग और दालचीनी और पानी में लौंग और दालचीनी उबालकर उस भाप को घर में फैलने दीजिए, इससे सीलन की बदबू तुरंत गायब हो जाएगी। एक छोटी सी कटोरी में आप नमक रख सकते हैं, है ना, और भर के कोनों में रख दें जहाँ पर सीलन ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ें जो होती है ना वो हवा में मौजूद जो भी अतिरिक्त नमी होती है या बदबू होती है उसको सोख लेते हैं, और पानी में थोड़े से गुलाब जल में आप डाल सकते भी कर उसे छिड़क सकते हैं घर में। तो ये सब चीज़ें आप जो बताएं ना, ये सब चीज़ें करके, खासकर जो कपूर होता है वो तो हमने किया भी हुआ है, कपूर को और लौंग को और दालचीनी को आप एक साथ रख के अगर जलाते हैं या इसका अरोमा सा फैलाते हैं घर में थोड़ा सा, तो बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, बहुत देर तक बनी रहती है वो,
0: बहुत देर तक बनी रहती है, और एक बड़ा सात्विक सा माहौल घर में हो जाता है ना। और एक संदेश में और ये टिप बताई है हमारी सखी ने कि आप बेकिंग सोडा और नींबू, ये आप दोनों को लेकर के थोड़ा सा बेकिंग सोडा, कॉफ़ी पाउडर और नींबू के छिलके एक कटोरी में मिलाकर रख दें, तो इससे भी जो नमी है वो सोख लेती है हवा से, और नींबू और जब भी मौसम थोड़ा साफ हो तो खिड़कियां थोड़ी देर के लिए खुली रखें, और जैसे तुमने भी बताया कि कपूर और नारियल का तेल, ये लकड़ी के फर्नीचर पर कपूर और नारियल के तेल का मिश्रण लगाने से फफूंद या बदबू की समस्या दूर हो जाती है। कपड़ों की अगर बात करें तो कपड़ों को धोने के बाद अच्छी तरह निचोड़ लें और पंखे की हवा में पूरी तरह सूखने के बाद ही अलमारी में रखें। और अगर घर के बाहर जगह है तो सबसे पहले तो घर के बाहर ही ऐसी जगह है कि जहाँ शेड वगैरह है और आप उसको रख सकते हैं, उस शेड में सुखा सकते हैं, तो पहले वहाँ अच्छे से सुखा लीजिए। और अलमारी में तो तभी रखिए जब बिल्कुल

0: अच्छे से आपके कपड़े सूख जाएं,
1: नहीं तो उसमें फफूंद आ जाएगी अगर
0: बिल्कुल
1: थोड़े से भी गीले
0: काले कलर के कपड़े होते हैं ना, तो कैसे उसमें फफूंद आ जाती
1: बिल्कुल
0: है? और वो दिखाई देती है असल में
1: बिल्कुल। तो जो भी गीले कपड़े हैं गीले मत रखिए, उनको बस अच्छे से सुखा लीजिए, उसके बाद ही आप उसको अंदर रखिए। साथ ही आप अगर कहीं पे भी, एक हमारे जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि दीवारों में अगर नमी दिखाई दे तो समय रहते उसकी मरम्मत करानी चाहिए। थोड़ी सी सावधानी से बारिश की नमी को घर की परेशानी बनने से रोका जा सकता है, क्योंकि जहाँ से भी टपक रहा है पानी या जहाँ पे सीलन आ रही, बहुत बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है या पानी उसमें उसकी वजह से वहाँ सीलन आ गई है, तो उस जगह को अच्छे से आप मरम्मत करवा लीजिए ताकि वो पानी वहाँ पर आना रुक जाएगा, तो सीलन भी की समस्या से भी निजात मिल जाएगी।
0: और एक हमारी सखी ने एसेंशियल ऑयल्स के बारे में बताया है कि आप चाहें तो गुलाब जल में लैवेंडर ऑयल या लेमन ग्रास ऑयल की कुछ बूंदें मिलाकर स्प्रे बॉटल में भरकर इसे घर में स्प्रे कर सकते हैं, अलग अलग जगह छिड़काव कर सकते हैं, तो इससे भी ताजगी बनी रहती है। और अब अच्छा मूड बनने के लिए गीत चलिए।

0: समय आ गया है सखियों से विदा लेने का।
1: बिल्कुल, आप सभी को दीपा माहेश्वरी
0: और आरती श्रीवास्तव का
1: नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: नमस्ते दोस्तों, विविध भारती का स्टूडियो नंबर 1 हाजिर हूं मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। दोस्तों 28 तारीख को हम मना रहे हैं प्रेम विश्वास और स्नेह का पावन पर्व रक्षाबंधन। रक्षाबंधन केवल एक धागे का त्योहार नहीं बल्कि ये उस अनमोल रिश्ते का उत्सव है जिसमें भाई बहन का प्यार छिपा होता है, अपनापन और एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव होता है। बहन की राखी में छिपी होती है शुभकामनाओं की मिठास और भाई के वचन में होता है जीवन भर साथ निभाने का संकल्प। तो आइए अपने रिश्तों की गर्माहट को महसूस करें और मनाएं रक्षाबंधन का ये पर्व प्रेम और खुशियों के साथ। शुरू करते हैं सिलसिला हेलो फरमाइश का। बहुत सारे श्रोता अपनी बातें साझा कर रहे हैं रक्षाबंधन के बारे में, तो चलिए सुनते हैं ये कार्यक्रम और देखते हैं कि पहला कॉल कौन सा है। हेलो फरमाइश,
1: मेरा नाम सिद्दीक हूँ, मैं भोपाल से बोल रही हूँ।
0: हाँ जी बताइए सिद्दी जी, तो सारे काम सिद्ध हो गए आपके सारे सपने?
1: जी
0: बढ़िया है। और क्या काम काज है आपका?
1: जी मेरा लेट मशीन का काम है, मशीन चलाता हूँ।
0: अच्छा, ये लेट मशीन क्या है, मतलब इससे क्या कुछ बनता है, जरा बताइए डिटेल में।
1: जी मैम DHL का जॉब होते हैं वो बनाते हैं हम लोग, रेलवे का काम होता है DHL से आता है तो हम लोग बनाते हैं वो जॉब।
0: अच्छा, तो कटाई वटाई करते होंगे, तराशते होंगे, कटाई वटाई करते होंगे, उसको शेप में देते होंगे ना? बढ़िया। कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम मुझे संगम फिल्म का गाना सुनना था, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर
0: कि तुम नाराज न होना। तो ये गाना किसी खास के लिए सुनवाना चाह रहे हैं या आप खुद सुनना चाह रहे हैं, पसंद है आपकी?
1: जी खुद सुनना चाह रहे हैं।
0: लिखा कभी किसी को प्रेम पत्र आपने?
1: नहीं
0: लिखा।
1: ये गाना बहुत पसंद आता मुझे इसलिए।
0: अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। अब सुनवा रहे हैं आपको संगम फिल्म का ये गाना जिसकी फरमाइश आपने की।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। मैम नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैम मैं अलंकार मार्केट देवास मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, आपका नियमित श्रोता फार्मासिस्ट मुस्तफ़ा हुसैन बोहरा।
0: जी मुस्तफ़ा हुसैन जी, बताइए क्या हाल है?
1: मैम हमको बहुत अच्छा, आपके आशीर्वाद से। मैम आप कैसी हैं?
0: मैं बहुत बढ़िया, और आप सबकी आवाज़ें सुनकर एकदम दुरुस्त हो जाती हूँ। तो मुस्तफ़ा जी बताइए क्या काम काज है आपका?
1: देवास में अलंकार मार्केट में मेडिकल स्टोर है, हसन जी मेडिकल स्टोर के नाम से। मेरे पापा जो है प्रोपरेटर है और मैं फार्मासिस्ट हूँ।
0: अच्छा अच्छा बढ़िया। तो मेडिकल स्टोर चलाते हैं, तो कभी ऐसी दवाओं की कोई समस्या होती है कि कोई ग्राहक आकर आपसे कोई शिकायत करे किसी तरह की, ऐसा कभी कोई मौका आया है या कभी अर्जेंट कोई दवा की जरूरत पड़ी हो तो आप?
1: मैम वैसे तो ये सैयदना साहब की बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि अभी इससे कोई बहुत कम ग्राहक आते हैं कि इससे कोई दवाई का सहायता नहीं हुआ या शिकायत की हो। बाकी आजकल दवाई देते हैं तो ऊपर वाले का नाम सैयदना साहब का नाम लेके देते हैं कि आप उनको ठीक कर दीजिए ताकि उसको दोबारा दवाई लेने की जरूरत ना पड़े।
0: अरे वाह क्या बात है। लेकिन आजकल कुछ डुप्लीकेट दवाइयों का चलन आ गया है, तो इसके बारे में आप कुछ कहेंगे?
1: जो क्या तो बिल्कुल बराबर है, क्योंकि क्या है कि आजकल R&D में इतने ड्रग डेवलप, इतने फॉर्मुलेशन डेवलप हो गए हैं कि एक नाम की अलग अलग बहुत सारी 10 तरह की दवाई आती है।
0: आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि जब दवा खरीदें तो किस बात का ध्यान रखें?
1: मैं आपसे और तमाम श्रोताओं से तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी कोई दवाई आप खरीदें उसका बाकायदा लेवल पढ़ के ताकि कौन सा फॉर्मुलेशन आपका है, आपको वो उससे असर करेगा कि नहीं, और उसकी एक्सपायरी डेट जल्दी तो नहीं है, उसकी एक्सपायरी डेट कितनी है, कब वो बनी थी, उसकी जो फॉर्मुलेशन मिले हुए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे पैरासिटामोल, तो उसमें पैरासिटामोल बराबर मिलीग्राम मिला हुआ है, कम ज्यादा तो नहीं है, अगर ज्यादा है तो हमने को रिएक्शन तो नहीं करेगा, कम मात्रा वाला दवाई रिएक्शन नहीं करेगी, तो आप कम क्वांटिटी वाले ही मेडिसिन आप दीजिए।
0: जी जी, जैसे कि कोई मेडिकल स्टोर वाले क्या करते हैं, मरीज आता है बोलता है कि हाँ हमें सर्दी जुकाम खांसी है, कोई दवा है क्या, कोई और सामान लेने आया और ऐसे पूछ लिया, तो जो MR होते हैं मेडिकल स्टोर वाले वो दे देते हैं, कहते हैं अरे हाँ ये दवा खा लो। तो ये भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि डॉक्टर का फर्ज मेडिकल स्टोर वालों को नहीं अदा करना चाहिए, है ना
1: जी? हालांकि कई मेडिकल स्टोर ऐसा होता है कि जैसे कोई

0: अपने प्रिस्क्रिप्शन लिखी हो मेडिकल आया अपने कमीशन के चक्कर में कुछ और दे देते हैं। तो आपसे तमाम श्रोताओं से तो इतना ही कहूंगा कि भारत के श्रोताओं में जो मेडिकल कराते हैं तो कृपया आप ऐसा ना करें कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखी है वही की वही दवाई दे तो वो उस पेशेंट के लिए ज्यादा कम्फर्टेबल रहेगा और हमारे लिए ज्यादा कम्फर्टेबल रहेगा जो हम दुकान संचालक।
1: जी जी मुस्तफा जी, हमें बताइए कि ये जो जेनेरिक मेडिसिन और एथिकल मेडिसिन है इसका क्या भेद है, जरा क्लियर कीजिए हमारे श्रोताओं को।
0: फर्क तो इतना रहता है कि जेनेरिक मेडिसिन जो रहती है वो बहुत सारे जगहों पर मिल जाती है और उनकी कोई मार्केटिंग वगैरह नहीं होती है, ना ही उनके लिए कोई एमआर वगैरह मिलते हैं। एथिकल का तो क्या है कि हर मेडिकल हर स्टोर पे अवेलेबल हो जाती है, उनकी मार्केटिंग बाकायदा हो जाती है, उनके एमआर वगैरह आके मिल जाते हैं।
1: जी तो बताइए कौन सा गाना आपकी पसंद का हम पेश करें।
0: मैम एक्चुअली मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, कई फिल्म उनकी देखी है, उनकी फिल्म आई थी बीवी नंबर वन, उसका गाना सुनना है हाय हाय मिर्ची।
1: बहुत बहुत शुक्रिया फोन किया आपने। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम बीवी नंबर वन।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं जयदीप अस्थाना इंदौर से बोल रहा हूँ
0: जी। बताइए जयदीप जी, क्या हाल है आपका और इंदौर का क्या हाल है?
1: इंदौर का बहुत बढ़िया, अच्छा प्लेजेंट मौसम हो रहा है अभी तो, हिल स्टेशन जैसा।
0: अरे वाह, बारिश हो रही है मतलब?
1: हाँ, हल्की हल्की हो रही है बारिश, लेकिन मौसम अच्छा है।
0: इंदौर के पास ये जो एक पहाड़ी पर मंदिर है बाज बहादुर, और क्या है वहाँ पर कुछ दर्शनीय स्थल है ना?
1: एक तो इंदौर के अंदर ही एक देवगराड़िया है, और पहाड़ी पर तो इधर मांडो पे है,
0: मांडो ये पहाड़ी पर जो मांडो है उसके बारे में हमें बताइए। हमारे श्रोताओं को कैसे जाया जाता है और क्या है वहाँ पर?
1: मांडो इंदौर से 100 किलोमीटर

0: दूर है और यहाँ से इंदौर से आराम से कोई भी टैक्सी वगैरह मिल जाती है। वहाँ पे एमपी टूरिज्म के अच्छे होटल्स भी हैं और प्राइवेट होटल्स भी हैं, एक दिन के लिए बहुत अच्छा स्टे है। इंदौर के आसपास ऐसे महेश्वर भी है, उज्जैन भी है, ओमकारेश्वर भी है,
1: जी जी देवास भी है ना?
0: देवास भी है, तो ये सभी जगह मंदिर हैं।
1: देवास में पंडित कुमार गंधर्व का निवास है, जो शास्त्रीय संगीत के चाहने वाले हैं वो तो बाकायदा उसे मंदिर की तरह पूजते हैं और वहाँ जाते हैं दर्शन के लिए। बहरहाल हम ये जानना चाह रहे थे कि मांडो किस लिए प्रसिद्ध है।
0: मांडो पिकनिक स्पॉट के लिए और वहाँ पे बहुत पुरातत्व महल टाइप का।
1: जी, तो आप अपने बारे में जरा जानकारी दीजिए, क्या करते हैं आप?
0: मैं बिजनेस करता था, अभी तो मैंने वाइंड अप कर दिया टोटल। मेरे पास सारेगामा इंडिया लिमिटेड, आपकी म्यूजिक इंडस्ट्री से ही रिलेटेड, उसकी C&F थी पूरे MP और छत्तीसगढ़ की।
1: अरे वाह, तब तो फिर आपके पास अगर कोई संगीत प्रेमी है तो रिकॉर्ड वगैरह सब मिल जाएगा?
0: हाँ, मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड भी हैं और मैंने MP और छत्तीसगढ़ के विविध भारती स्टेशन CD में से ही खरीदते थे।
1: अरे वाह, क्या बात है, तो बंद क्यों कर दिया भाई बिजनेस?
0: ये तो मैडम पेन ड्राइव और ये डिजिटल वगैरह आया तो कंपनी ने ही वाइंड अप कर दिया। अभी पूरा डिजिटल फॉर्मेट में बिकने या CD कैसेट बिकना ही बंद हो गई, तो कंपनी ने ही वो करा था। मैंने दूसरे बिजनेस भी करे इलेक्ट्रॉनिक्स में, मोबाइल वगैरह के। अब मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर बन गए, यानी मास्टर्स कर रहे हैं, तो फिर मैंने वाइंड अप कर दिया।
1: चलिए, मतलब बहुत मेहनत कर ली और उसके बाद अब आराम कर रहे
0: हैं। आपका विविध भारती सुनते हैं, अपने रिकॉर्ड सुनते हैं,
1: तो म्यूजिक सुनते हुए फिर गाना भी सीख लिया होगा, क्योंकि म्यूजिक का बिजनेस था तो निश्चित रूप से गाना भी गाते होंगे। तो इसमें
0: हाँ, गाने तो मैं मेरे फेसबुक अकाउंट पे मैं गाता रहता हूँ, डालता भी रहता हूँ, अपलोड भी करता रहता हूँ।
1: तो भाई हमें कैसे पता चलेगा, हमारे श्रोताओं को कैसे पता चलेगा आप जब तक गुनगुना के नहीं सुनाएंगे?
0: सुना देते हैं मैडम, जो गाना मेरी फरमाइश है वही वाला सुना देते हैं।
1: जी जी
0: तुमसे

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं अनुप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ। मेरा गांव का नाम है राम कृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट है श्रीभूमि, असम से।
0: अच्छा,
1: मैं ऐसे में मैं बंगाली हूँ, बांग्ला कथा बोली
0: जी।
1: और बांग्ला रसगुल्ला भालोबासी। दो लाइन बोलू मैम
0: जी। जी बोलिए।
1: दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं है हमारी, दिखाए के शरीफ बनने की आदत
0: नहीं है हमारी। जी क्या
1: सब
0: बात,
1: चाहे जैसी भी हो खुलेआम बोलते हैं, है ना।
0: बहुत बढ़िया। तो ये पंक्तियाँ आपने खुद रची हैं कि कहीं से किसी की?
1: नहीं, इमिटेट किया है
0: जी।
1: सब अच्छा लगता है शायरी, तो
0: जी
1: छोड़ देता हूँ इस प्लेटफॉर्म में।
0: हमें तो बताइए, आपकी असम की बात आपने कही, तो असम में रहते हैं या इस समय जो गांव का नाम
1: जी, असम में? सुनिए ममता जी, हमारे असम में डाइवर टू पार्ट है। एक पार्ट का नाम है ब्रह्मपुत्र वैली और दूसरी पार्ट का नाम है बराक वैली। बराक वैली में हम इनहेबिटेंट्स है। हमारे ज्यादातर हमारे यहाँ पे बंगाली कम्युनिटी का, बंगाली संस्कृति का धरोहर है। और दूसरी जो ब्रह्मपुत्र वैली है वो तो लार्ज नंबर ऑफ एसामीज कल्चर है। एसामीज बिहू, एसामीज गाने जो है वो तो अवेलेबल होते हैं। वो बात करते हैं, हम तो बोलते हैं आमी तुमा के भालोबासी, वो बोलते हैं मोय तुमको, ऐसे करके क्या बोले उसका जो लैंग्वेज।
0: और बच्चे को शुवाली,
1: शुवाली जी जी जी, आपने सही पकड़े है। और हमारे यहाँ पे तो लार्ज स्केल से असम में टी गार्डन, कड़कदार चा, चाय के दर चा, क्या बात है। और वो एक्सपोर्ट होते हैं और बहुत लाजवाब वो ड्रिंक है
0: जी जी।
1: तो आज इस प्लेटफॉर्म में एक गाने का लुत्फ उठाना चाहते
0: हैं जी। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: फिल्म का नाम है सिर्फ तुम और गाने का बोल ऐसे, पंसी

0: हेलो फरमाइश।
1: मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, प्रदीप कुमार तिवारी।
0: जी प्रदीप जी, बताइए अपने बारे में।
1: मैं रेलवे में कंडक्टर था, एसी में चलता था, भुसावल नागपुर झांसी दिल्ली। अब जो है 8 साल हो गए मैडम, रिटायर हो गया मैं।
0: अच्छा, रिटायरमेंट के बाद भी आपको सुविधाएं दी जाती होंगी ना सरकार की ओर से?
1: हाँ, सरकार से पेंशन मिल रही है।
0: हाँ।
1: और सब चीजें मिल गई है। सबसे अच्छा ये राज्य में अपने बच्चों को, क्योंकि ट्रेवलिंग वाला जॉब था तो बच्चों को बड़ा होते नहीं देख पाया मैं।
0: अच्छा, ओ
1: उनके बच्चों को बढ़ता हुआ देख रहा हूँ तो पुरानी चीजें याद आ रही कि यार मैंने अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखा होता।
0: देखिए ना, जब हम टीसी को देखते हैं तो हमारे मन में ये ख्याल नहीं आता कि आप अपने परिवार को छोड़कर इतनी भीड़, इतनी तकलीफ देह यात्रा भी करते हैं। तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए। और बाकी सबके लिए बर्थ होती है सोने के लिए, आप लोगों के लिए बर्थ नहीं होती है। आप बैठ के यात्रा करते हैं, एक छोटी सी सीट होती है, देखा है। तो अब यहाँ पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि 28 तारीख को रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार होता है, तो
1: बिल्कुल
0: आप कुछ कहेंगे रक्षाबंधन के अवसर पर? आपकी बहन की राखी आई?
1: तीन बहनें हैं, तीनों बहनें जो हैं भोपाल में आ जाती हैं राखी बंधवाने के लिए घर पे। और दिन भर बड़ा अच्छा लगता है मैडम, मिठाई वगैरह जो है बच्चों के लिए ले आते हैं। अब हम लोग तो खा नहीं पाते मिठाई, राखी जो है बच्चों में झगड़ा होता है कि ये राखी अच्छी है, ये मैं बांधूंगी, ये वो, तो बड़ा अच्छा उसे लगता है। 28 तारीख को बड़ा अच्छा लगता है।
0: जी जी, फिर तोहफे का आदान प्रदान भी होता है ना कि भाई कुछ?
1: वो तो मैडम सिस्टर बड़ी है, संपन्न है, तो वो तो एक साड़ी अच्छी दे दो उनको, उसमें मान जाती है।
0: अच्छा जी जी, रक्षाबंधन पर भाई जो प्रेम से दे वही स्वीकार्य होता है बहन को।
1: जी जी,
0: और अपनी दुआओं की तावीज भी बांधती है राखी के साथ बहन। तो चलिए बताइए अब कौन सा गाना आपको सुनवाए?
1: राखी धागों का त्योहार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको, फोन किया आपने, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम, मैं नमस्कार भोपाल मध्य प्रदेश से श्रवण सिंह किन्नारे बोल रहा था।
0: जी बोलिए श्रवण जी, क्या हाल है आपका?
1: जी बहुत अच्छा, मेरा सौभाग्य है कि आज मेरा फोन लग गया, कई साल के बाद लगा।
0: जी बिल्कुल, एक बार क्या इसके पहले बात हुई थी पर भी कई महीने पहले, तो बताइए क्या हाल है अब, भोपाल का क्या हाल है, भोपाल में क्या गतिविधियाँ चल रही है आजकल?
1: कल बहुत बारिश हुई है, बहुत ज्यादा बारिश हुई कल वहाँ पे भोपाल में। बाकी तो आसपास के क्षेत्र में सब दूर बारिश हो रही है, सभी पोखर तालाब जितने हैं भरते जा रहे हैं, डैम पानी की कमी ऐसा लग रहा था कि हो जाएगी, लेकिन बड़ा तालाब जो हमारा यहाँ बड़ी झील है भोपाल की बहुत फेमस है, बिल्कुल लबालब है, बिल्कुल इस समय बहुत लहरें उठ रही समुद्र जैसी, वहाँ पे देर से आई लेकिन बरसात आ गई समय से आ गई।
0: जी तो मुंबई की बारिश ऐसे लगता है कि बाकी शहरों में चली गई है, मुंबई में बारिश नहीं हो रही इस समय, हल्की फुल्की झीसी पड़ती है बस बंद हो जाती है। हमने सुना है प्रयागराज में भी खूब बारिश हुई, बाढ़ आई है, और शहर के आज तो हेलो फरमाइश में बहुत सारे श्रोताओं ने बताया कि उनके यहाँ बारिश हो रही है।
1: हाँ जी, पूरे भारतवर्ष में एक तरह से बारिश हो रही है।
0: जी जी जी,
1: और मेरी बहने, तीन बहने गई हैं तीर्थ यात्रा पे।
0: अच्छा, तो राखी कैसे बांधेगी 28 तारीख को रक्षाबंधन?
1: आज सभी ओंकारेश्वर में है, ओंकारेश्वर जो प्रसिद्ध स्थल है खंडवा जिले में।
0: जी जी जी,
1: और वहाँ से कल सभी बहने हमारी गांव पे आ जाएंगी, हरदा के पास हमारा गांव है, खेती वगैरह है, तो वहाँ सब बहने आ जाएंगी और मैं 26 तारीख को चला जाऊंगा।
0: अच्छा,
1: हम तीन चार दिन धूमधाम से रहेंगे बहनों के, उनका स्वागत करना रहते हैं।
0: क्या बात
1: जब
0: है,
1: कोई हमारे यहाँ तीर्थ जाते हैं तो उनके आने में पूरा परिवार मिलता है, हम मंदिर में उन सब स्वागत करते हैं।
0: अरे वाह,
1: कहा ये जाता है कि पहले जब तीर्थ यात्रा पे जाते थे तो लोगों को उम्मीद नहीं होती थी कि वो लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, उस हिसाब से बड़ा वो परंपरा चली आ रही है अभी तक। तो नए वस्त्रों से हम उनका स्वागत करते हैं, मंदिरों में वहाँ भोजन करते हैं।
0: अच्छा,
1: फिर उनको घर लेके जाते हैं। जी
0: वाह वाह, तो फिर तो ये बड़ा अच्छा हो गया, आप जाएंगे और उसके बाद फिर रक्षाबंधन का पर्व भी आ रहा है तो राखी भी बन जाएगी फिर तो।
1: जी जी जी,
0: तो बहनों को इस बार रक्षाबंधन पर क्या तोहफा देने वाले हैं, कुछ सोच रखा है आपने?
1: देखिए बहनों को तो अब उनकी पसंद की बात करें तो आजकल इतनी ज्यादा मार्केट में वैरायटीज हो गई है, मैं तो नगद राशि और एक लिफाफा देना ही पसंद करता हूँ बहनों
0: जी।
1: को पसंद जो चाहे ले लीजिए।
0: जी बहुत बढ़िया, और बताइए आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: बढ़िया चल रहा है कामकाज, मैं इस समय टूर पे हूँ सिवनी जिले में।
0: अच्छा,
1: महाराष्ट्र की बॉर्डर पे सिवनी जिले में, यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ऑडिट करने के लिए आया हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: और यहाँ से मैं कल शाम को रवाना हो जाऊंगा, परसों ईद मिलन करके वहाँ चला जाऊंगा बहनों से मिलने के लिए।
0: जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आए हैं तो मतलब एक तरह से जंगल की सैर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में तो बड़े घने जंगल हैं और हरियाली बहुत है, हमने देखा है कि महाराष्ट्र के गांव एकदम हरे भरे समृद्ध हैं, तो आपने क्या देखा बताइए आप?
1: ये सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, वहाँ पे मैं देखने के लिए गया था।
0: हाँ,
1: और
0: श्रवण सिंह किन्नारे से बात चल ही रही थी और बहुत दिलचस्प बात चल रही थी तब तक फोन डिस्कनेक्ट हो गया। सतपुड़ा की बात की, सतपुड़ा की पहाड़ियां की, तो श्रवण जी आपको पता है सतपुड़ा के घने जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता बड़ी मशहूर है और बहुत ही सुंदर कविता है, तो जब भी जंगल में जाए या जंगल की ओर या जंगल के बारे में पढ़े तो भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता जरूर पढ़े। और यहीं पर बातचीत के दौरान श्रवण सिंह किनारे जी का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन बात उन्होंने रक्षाबंधन की है तो हम उनको सुनवा रहे हैं रक्षाबंधन का ये गाना, फिल्म का नाम है अनजाना, सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश,
1: हम इंदौर से बात कर रहे हैं ममता जी।
0: आपका शुभ नाम?
1: विशाल यादव
0: जी। विशाल जी, बताइए कौन सी फिल्में देखना पसंद करते हैं, किस तरह की, पुरानी नई?
1: मैं पुरानी फिल्में देखना पसंद करता हूँ, जो क्लासिक रहती है और वही मुझे अच्छी लगती है अधिकतर।
0: मनोज कुमार की और कौन सी फिल्में आपने देखी है?
1: देशभक्ति की तो मैंने सारी देख रखी उनकी, और उनके गाने भी अच्छे लगते हैं मुझे।
0: भाई देशभक्ति की फिल्में बनाई उन्होंने इतनी ज्यादा कि उनका नाम ही भारत कुमार पड़ गया ना।
1: और मैडम जी काफी दिनों से ट्राई कर रहे थे, आज हमारा कॉल हमने बहुत मुश्किल से लगाया है
0: जी। तो लग गया है फोन।
1: जैसे संडे के दिन हम जो सुनते हैं ना सुबह देशभक्ति का जो रहता है,
0: वंदन बार में देशगान आता है, रामचरितमानस होता है, फिर संगीत सरिता के बाद भूली बिसरी गीत, हमें राय प्यार के, चित्रलोक,
1: तो वो भी हमें काफी पसंद आता है वो।
0: अच्छा अच्छा, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: मैं यादगार मूवी का गाना सुनना चाहता हूँ, मनोज कुमार जी की।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, ममता सिंह जी को और विविध भारती की पूरी टीम को दिनेश सोडा का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी पूरी विविध भारती की टीम की ओर से दिनेश जी आपको भी हमारा नमस्कार।
1: सर धन्यवाद, आपको रक्षाबंधन की भी शुभकामनाएं। विविध भारती के जितने भी श्रोता टीम है, पूरे रेडियो प्रेमी श्रोता प्रेमियों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं।
0: आपको भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कहाँ से बोल रहे हैं आप सोडा जी?
1: ममता सिंह जी, मैं जोधपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ, विविध भारती का नियमित श्रोता।
0: जी जोधपुर में राखी भाई बहनों के अलावा अन्य रिश्तों में भी बांधी जाती है, हमने सुना है, बताइए।
1: बिल्कुल आपने सही फरमाया, बिल्कुल ये एक धागा नहीं है, प्रेम का धागा, प्रेम का रिश्ता, टूट बंधन है ये भाई बहन का।
0: जी जी, किन किन लोगों को बांधी जाती है राखी?
1: भाई को भी बांधी जाती है, बहन को भी बांधी जाती है, मतलब धर्म का भाई भी करते हैं, जैसे किसी का भाई नहीं होता ना, तो मैंने धर्म का भाई भी बनाती है, और धर्म का भाई भी है ना, प्रीत निभाते हैं।
0: भाभी को भी राखी बांधी जाती है ऐसा मैंने सुना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो लटकन वाली राखी होती है, लटकन वाली राखी, लूंगा राखी, यहाँ पे बहुत सारी राखी, अलग अलग वेरायटी की राखी मिलेगी आपको।
0: जी
1: हमारे राजस्थान तो मतलब बहुत ही त्योहारों का देश है, त्योहारों का प्रदेश है, और अनेकता में एकता वाला प्रदेश है राजस्थान। यह पत्रों का शहर भली है, यहाँ के पत्र मशहूर है, पत्रों का शहर भली है, लेकिन यहाँ के लोग पत्र दिली है। यहाँ आज भी मेहमानों के आगमन होता है, तो आज भी मेहमानों के रवा में फूल भी कहते जाते हैं।
0: जी बिल्कुल, मेहमानबाजी के लिए मशहूर है और बहुत अच्छा।
1: नंबर वन
0: रक्षाबंधन का त्योहार आप कैसे मनाते हैं, क्या करते हैं सुबह से?
1: सेवाया बनाते हैं, और बहने आती है, राखी बांधते हैं, और बहन को वचन देते हैं उनकी रक्षा करेंगे। रक्षाबंधन एक रक्षा का सूत्र होता है, बंधन होता है, जब भी बहन पर कोई विपदा आती है, संकट आता है, तब भाई उसके साथ खड़ा रहता है। और ऐसी परंपरा है की हुमायूं मुल्क जो कर्मा थी ना, सिपाही जो हुमायूं को राखी भेजी थी, तो उन्होंने वचन दिया था कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, और उन्हें सिर काट के दे दिया था।
0: जी जी,
1: और जब भी उन पर लड़ी हुई थी तो वो गए थे उनकी लड़ी में, कर्मावती ने राखी भेजी थी।
0: जी जी, और रक्षाबंधन के दिन एक रक्षा सूत्र आता है, वो तो सभी को पूरे परिवार में एक दूसरे को बांधा जाता है।
1: आपको पता होगा मैडम, राजस्थान में तो जब खेती करने के लिए हल चलाते ना, तो हल पर भी राखी बांधते, ऐसी भी परंपरा में।
0: बिल्कुल सही बात है, दरवाजे पर भी राखी बांधी जाती है उस दिन। तो
1: ममता जी, हर कोई प्यारा नहीं होता, हर किसी से प्यार नहीं होता, हर कोई प्यारा नहीं होता, हर किसी से प्यार नहीं होता। ममता जी, ये तो दिल मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता।
0: जी क्या बात है भाई, और दिल मिलाने के लिए बहुत जरूरी होता है एक दूसरे की संवेदनाओं का ख्याल रखना, एक दूसरे की बात को गौर से सुनना और उस पर अमल करना।
1: तो
0: बताइए,

0: कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैं मेरी बहन को डेडिकेट करूंगा कि मेरी बहन का गाना फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। हरे राम हरे कृष्णा मूवी का है, किशोर दा की आवाज में, देवानंद पर फिल्म का गाना है।
0: जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद फोन किया आपने। अब आपके जोधपुर शहर में हम भेज रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम हरे राम हरे कृष्णा।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: गांव बेटोड़ा भोयर जिला वाशिम महाराष्ट्र से योगीराज मस्के बात कर रहे हैं।
0: योगीराज मस्के जी, आपकी मनचाहे गीत में भी चिट्ठियाँ आपके नाम की आती हैं।
1: जी।
0: तो पत्र भी लिखते हैं?
1: जी, अभी तो पत्र कम हो गए मैडम जी, मिलते कम हैं।
0: आपको बता दें, विविध भारती में पत्रों की संख्या फिर वैसी ही हो गई है।
1: लोगों ने लगभग बहुत हद तक श्रोताओं द्वारा बहुत ही प्यार दिया गया है विविध भारती को।
0: जी बिल्कुल सही बात है, और उस प्यार को फिर आंखों पर लिया है विविध भारती ने। तो मस्के जी, जरा बात पत्र की चली थी, तो बताइए पत्र लिखने की परंपरा अब जैसे कम हो रही है, तो क्या आप किसी को पत्र लिखते रहे, पहले लिखते रहे अपनी बहन को, भाई को?
1: लगभग श्रोताओं से जुड़ा पत्रों से ही शुरू हुआ था, तो वो सिलसिला आज कम हो गया है। जैसे श्रोताओं के लिए फोन वगैरह का, जैसे व्हाट्सएप वगैरह, इसी कारण से कम हो गया, नहीं तो रेडियो केंद्र हुए और विभिन्न विधाओं में आज भी खत लिखे जाते हैं। मैं तो लिखता हूँ।
0: जी बिल्कुल, और खास मौके पर तो पत्र लिखना ही चाहिए, जैसे रक्षाबंधन है।
1: खास मौके पर तो निरंतर लिखे जा रहे हैं, लिख भी रहा हूँ। खतों का मिलना दूभर हो रहा है, बस बड़ी दिक्कत से मंगवाने पड़ते हैं दोस्तों से।
0: जी जी, ग्रीटिंग की परंपरा थी, ग्रीटिंग अपने हाथ से बना के भेजे जाते थे, कुछ अलग ही
1: थी। बाद में शुरुआती समय में तो मुझे याद है

0: पैसे का अंतर देखिए आया करता था
1: और वो
0: जी।
1: ग्रीटिंग जब आते थे तो ग्रीटिंग को बहुत समय तक अपने टेबल पर और स्टडी में सजाया जाता
0: मैंने
1: था
0: तो
1: ना।
0: लगभग संजोए रखा हुआ है। वो तो ये बात है कि खत एक अलग चीज है, उसमें सब कुछ भाव तो छोड़िए, पर वो उस आदमी का फिल्मों में दिखाया जाने वाली बात नहीं है, पर सच में आदमी दिखता था। अगला जो भी व्यक्तित्व है, हम जिस व्यक्तित्व से बात कर रहे हैं, तो वो व्यक्तित्व हमें सीधे हमसे रूबरू होता था खत के द्वारा
1: जी।
0: जी। तो आज फिल्म का नाम है हीना और गीत के बोल है देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए।
1: बहुत बढ़िया गाना चुना है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मस्के जी। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं अम्बेडकर चौक खोराई जिला सागर से आपका नियमित श्रोता राम सखी परमानंद बोल रहा हूँ मैम।
0: जी परमानंद जी, बताइए क्या हाल है आपका?
1: बड़ी काम का
0: जी। कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: पिक्चर का नाम हिमालय की गोद में, और उसके गाने के बोले

0: दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है, उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध है कि आगामी 2 माह तक कृपया वे हमें कॉल ना करें, ताकि अन्य श्रोताओं को भी इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिले। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का STD कोड है 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता दें, 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का STD कोड 022। अब चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: శ్రోతలు ఇంతవరకు జానపద సంగీత కార్యక్రమంలో జానపద గేయాలు విన్నారు. ఇంతటితో ఈనాటి జానపద సంగీత కార్యక్రమం సమాప్తం. ఆకాశవాణి నిజామాబాద్ కేంద్రం నిలయంలో సమయం 8:45 కావస్తుంది. కాసేపట్లో వింటారు హిందీలో వార్తలు, అనంతరం ఆంగ్లంలో వార్తలు ఇలా అవుతాయి. ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రాత్రి 10 మధుర గీతాలు వింటారు.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సే సమాచార్ సంధ్యా కే సాథ్ మే ముకేష్ కుమార్. नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज. लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय, मृतकों की संख्या 359 हुई. बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी. इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया. सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की. और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ, भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती. भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं. नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा

0: सुनिश्चित और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशोली एक जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से 9111238817 पर संपर्क किया जा सकता है। व्हाट्सएप कॉल और संदेश के लिए 9199681918 नंबर जारी किया गया है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए 9779851386 9779701075 और 9779810326117 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। नेपाल में छोछेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार झील में अगले 3 दिन में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की।
2: बिहार जल संसाधन विभाग के अनुसार गंडक बैराज पर जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि नेपाल के देवघाट क्षेत्र में बारिश के कारण नदी के जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि
3: नेपाल में इस तरह से आपदा आया, ये चिंता का विषय है, सबको चिंता भी करनी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार बिहार की स्थिति को भी देख रहे हैं। अब धीरे धीरे चीजें समान हो रही है।
2: किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बिहार में NDRF की 9 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि अतिरिक्त बचाव दल की 4 टीमें तैयार रखी गई हैं। इधर पड़ोसी देश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने समस्तीपुर रेल मंडल में अलर्ट जारी किया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल के सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरूआती सहायता दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
5: डिस्कशंस आर एक्सपेक्टेड।
6: दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। इसमें व्यापार और निवेश, महत्वपूर्ण खनिज, स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क शामिल है। ये बातचीत भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करेगी।
5: स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल रिलेशनशिप।
0: ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादो जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत विनिर्माण, नवाचार और निर्यात के लिए वैश्विक मंच के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कनाडा के निवेशकों से भारत की बढ़ती क्षमता का लाभ उठाकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की जरूरतें पूरी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सुधारों के जरिए हो रहे बदलाव और मजबूत आर्थिक वृद्धि से भारत कनाडा के बीच अधिक मजबूत और निवेश आधारित आर्थिक साझेदारी के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार का वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य है।
7: आज का यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
0: रक्षा मंत्री ने टैंक मरम्मत परियोजना को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और मानव कल्याण की प्रेरणा देते हैं। अहमदाबाद में आज गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा, बहुविषयक अध्ययन और कौशल आधारित विकास को प्राथमिकता दी गई है, जो महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप हैं।
8: पूज्य बापू का विचार था कि स्वाधीनता तब तक अधूरी रहेगी जब तक हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा श्रम और हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय न हो, अपना न हो। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति से हम बंधे हुए नहीं हैं तो स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं। और मन में स्वराज की परिकल्पना को अनेक प्रयोगों से जमीन पर उतारने का काम किया।
0: श्री शाह ने वर्ष 2047 तक सभी क्षेत्रों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर बल दिया। अहमदाबाद में फार्मा इनोवा अवार्ड्स 2026 में श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
9: भाई ने शुरुआत की और आज ये परंपरा ढेर सारे लोगों में रिसर्च के फील्ड में काम करने के लिए न केवल अनुकूलता बनी, आर्थिक मदद भी हुई। एक प्रकार से ये अवार्ड उनको एक्नोलेज करता है सोसाइटी में और इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश होने में। ये बहुत बड़ी बात है जो रजनी भाई ने उस जमाने में सोची।
0: गृह मंत्री ने अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
10: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है।
11: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के

0: मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खेलों को विकसित भारत का हिस्सा बनाने के लिए सभी से सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। खेल दिवस के अवसर पर आज IFLU विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने की पहल से देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अधिक पदक जीत रहा है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। श्रीमती निधि खरे ने कहा कि सरकार हर वर्ष ये सुनिश्चित करती है कि कीमतों में बढ़ोतरी होने पर रियायती दर पर प्याज उपलब्ध हो।
2: हर वर्ष हम लोग कोशिश करते हैं कि प्याज में अगर कोई कीमतों की बढ़ोतरी होती है तो उसमें रिटेल इंटरवेंशन के माध्यम से सब्सिडाइज दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। प्याज की जो प्रोडक्शन है या अवेलेबिलिटी है उसमें किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। एक्सपोर्ट को भी देखें तो पिछले वर्ष के मुकाबले भी सामान्य है।
1: मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज मैच के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने 5वां स्थान हासिल कर लिया है। आज खेले गए मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में भारत के लिए इश्का ने 1 और नवनीत कौर ने 2 गोल किए। जर्मनी के लिए एकमात्र गोल लिन क्रिंग्स ने किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय। मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की। और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ। भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India steps up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to flash flood tragedy. 290 Indians among nearly 1300 missing people. Death toll rises to 359. Heavy rain likely over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and northeastern states till Saturday. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan from Saturday. Defence Minister Rajnath Singh lays foundation stone for T-Series tank overhauling project at Jabalpur in Madhya Pradesh, terms it another milestone in nation's journey towards self-reliance. Government begins targeted release of onions from buffer stock to ensure adequate availability and moderate seasonal price pressures in coming months. And in men's cricket, second test between India and hosts Sri Lanka ends in a draw. Visitors clinch the series 1-0. And now the news in detail. India has stepped up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to the flash flood

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा, भारत की प्राचीन विरासत सारनाथ की वैश्विक पहचान। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रोशन लाल गौड़, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: रोशन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: रोशन जी, सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि, इसे हम सांस्कृतिक उपलब्धि भी कह सकते हैं, साथ ही इसका सभ्यतागत और कूटनीतिक महत्व भी है, खासतौर पे ऐसे समय में जब भारत बौद्ध देशों के साथ अपने सांस्कृतिक संबंधों को लगातार मजबूत कर रहा है। तो आपको लगता है कि ये जो एक नई उपलब्धि हमारे पास आई है, तो सारनाथ इस पूरी रणनीति में एक महत्वपूर्ण सेतु बन सकता है?
2: बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे जितने भी धरोहर हैं, लगभग 45 हैं जो यूनेस्को की सूची में आए हैं, और सारनाथ का यूनेस्को की सूची में आना बहुत बड़ी गर्व की बात है। वो इसलिए है कि बौद्ध धर्म की शुरुआत ही भारत से हुई थी, और भारत से शुरू होकर ये जापान तक गया। आज लगभग दुनिया की 7% आबादी ऐसी है जो बौद्ध धर्म को मानती है, और भारत को सारा क्रेडिट इसलिए जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म भले ही लुम्बिनी में हुआ हो, लेकिन उन्हें ज्ञान प्राप्त बोध गया में हुआ, उनका निर्वाण भी कुशीनगर में हुआ, और जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में उन्होंने दिया। तो इस तरह से भारत के लिए ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि जहां से भगवान बुद्ध ने अपनी यात्रा शुरू की, अपनी धर्म की यात्रा, अपने उपदेशों की यात्रा उन्होंने शुरू की, वो यात्रा आज पूरी दुनिया में फैल गई है। तो इसलिए ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने कूटनीतिक तौर पर कहा, तो इस कारण जो भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं और जो धर्म है बौद्ध धर्म, उसके कारण पूरी दुनिया में और खासकर जो बौद्ध देश हैं
1: जी,
2: उनमें जो भारत की सम्मान है, अभी आपने देखा कि जापान के जो पूरा एक प्रतिनिधि मंडल आया था, जापान का एक गवर्नर और उनके साथ जो लोग आए थे, उन्होंने पूरा फोकस ही

0: बौद्ध सर्किट जो है उन पर किया था, तो वो भी चाहते हैं कि वो इन्वेस्ट करें जहां जहां बौद्ध हमारे स्तूप हैं, जो बौद्ध सर्किट हैं, वहां आए और उसका प्रचार करें आगे। तो ये कूटनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।
1: जी रोशन जी, सारनाथ वो स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और अब जाकर के इसे यूनेस्को की वैश्विक मान्यता मिली है, और हम ये भी देखते हैं कि भारत को बौद्ध दर्शन उसकी मूलभूमि के रूप में दुनिया के सामने हमेशा हम प्रस्तुत करते हैं, और ये भी देखते हैं कि दुनिया में कहीं भी अहिंसा और शांति की बात होती है तो हम इन भगवान बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो जो हमारा मूल दर्शन रहा है आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, उसका कितना महत्व है आज के समय में?
0: देखिए आज तो बहुत ही अधिक है, इसलिए है कि सारी दुनिया में जिस तरह से एक कंपटीशन चला हुआ है, एक उपभोक्तावाद जो चल रहा है, अभी हमने देखा कि पश्चिम में किस तरह से युद्ध की स्थिति है, तो हम लोग सब यही चाहते हैं कि भगवान बुद्ध का जो संदेश है कि अहिंसा होनी चाहिए, उसी अहिंसा के लिए हमारे जितने भी हमारे देश के जो राजनीतिज्ञ हैं, जब वो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं तो अहिंसा की बात करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने ही अहिंसा का हमें पाठ पढ़ाया है, और उसी अहिंसा के बल पर हम लोग जगह जगह जाकर उसकी वकालत भी करते हैं। और यूनेस्को ने जो अभी हमारी सारनाथ को जो यूनेस्को की लिस्ट में डाला है, उससे इस बल, इसको जो अहिंसा का है, उसको ज्यादा बल मिलता है कि सारी दुनिया अहिंसा की तरफ आए।
1: रोशन जी, भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो अब वो 45 हो गई, और हमारा देश वैश्विक स्तर पर छठे स्थान पर आ चुका है, जिसमें इटली सबसे ऊपर आता है। तो संख्या बढ़ना भारत के लिए कितना मायने रखता है, और फिर हमारे सामने एक ये भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम उसका संरक्षण बेहतर ढंग से करें, प्रबंधन अच्छा करें, ताकि और भी ज्यादा पर्यटक उसकी ओर आकर्षित हों।
0: हमारा इतिहास आप देखिए, वेद काल से लेकर और वर्तमान तक हमारे भारत देश ने अनेक इतिहास देखे, और जब जब जो जो इतिहास ने जब जब करवट ली है, वह किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं किसी कोने पर एक सांस्कृतिक छाप छोड़ी है। आप महाभारत कालीन देखिए, रामायण कालीन देखिए, बौद्ध के समय के देखिए, आप वैदिक काल के समय के देखिए, तो जितनी हमारी साइट हैं, जितनी हमारी सभ्यताएं हैं, वो सब धीरे धीरे निकल रही हैं। तो जो अभी तक 45 साइट तो हो चुकी हैं, निकल चुकी हैं, लेकिन इसके अलावा न जाने कितनी हैं जिन पर अभी ध्यान नहीं गया है, या जिनकी शुरुआती तौर पर अभी खनन चल रहा है। जब ये खनन हर जगह धीरे धीरे जब ये सरफेस पर आएंगी, तो फिर इन साइटों की संख्या बढ़ेगी। मुझे लगता है कि इटली तो बहुत छोटा एक देश है, न जाने हमारे देश में कितनी ज्यादा साइट है जो अभी फोकस नहीं आई है। अभी जो हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो भी कोशिश कर रहा है कि जो छोटी छोटी साइट है, अगर उनका उत्खनन सही करे और उनके बारे में अगर इतिहास में सही हमें जानकारी मिल जाए, तो वो फिर दावा करेंगे, फिर यूनेस्को में फिर हमारी लिस्ट जाएगी, और ये संख्या मुझे लगता है कि बढ़ती ही जाएगी। अभी तो 45 हुई है, ये और ज्यादा बढ़ने वाली है।
1: अभी आप जो दावा करने की बात कर रहे हैं, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ कि सारनाथ की यूनेस्को मान्यता की प्रक्रिया 1998 की अस्थायी सूची से शुरू हुई थी, और जो 2026 में जाकर पूरी हुई है। ऑलमोस्ट 3 दशकों की ये यात्रा रही है। तो क्या यूनेस्को की प्रक्रिया इतनी जटिल है या इतनी लंबी है कि किसी भी स्थल की वास्तविक, ऐतिहासिक और सार्वभौमिक महत्ता को प्रमाणित करने में समय लगता है?
0: मुझे लगता है कि ये तकनीकी है, क्योंकि 1998 में अस्थायी मान्यता तो मिल गई थी, लेकिन उसके बाद जब उनकी टीमें आती हैं, क्योंकि ये 196 देशों का संगठन है और उसका कोरम भी होना जरूरी है, तो 196 देशों को तैयार करना, उनको मनाना, उनके सामने ऐसे प्रमाण देना, फिर वहां से टीमें आती हैं, जब टीम आती है उसके बाद वो अपने सर्वे करते हैं, और सर्वे करने के बाद उनको तसल्ली हो जाती है कि हाँ ऐसी साइट और कहीं नहीं है और इससे बेहतरीन नहीं है, तब वो उसको मान्यता देते हैं। और मान्यता के देने के साथ फिर एक जिम्मेदारी भी हो जाती है कि जिस देश में ये यूनेस्को ने मान्यता दी है, उस साइट का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, वहां एमिनिटीज कैसी होनी चाहिए, और जब वहां पर्यटक आए तो पर्यटकों के लिए सुविधा कैसी होनी चाहिए, इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। फिर सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो वहां की म्युनिसिपैलिटी, उसका भी एक रोल है कि हम उस साइट को इतना सुंदर बना दें कि जब भी कोई आए तो ये कहे हाँ ये यूनेस्को साइट है, तो यूनेस्को के स्तर की होनी चाहिए।
1: रोशन जी, यूनेस्को के मानदंडों में सारनाथ के आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं से उसके प्रत्यक्ष संबंध को भी महत्वपूर्ण माना गया है। तो भारत की अपनी ये जो विरासत है दुनिया के सामने रख रहा है भारत, धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि दर्शन की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, कला की बात करते हैं, मानव सभ्यता की भी बात करते हैं। भगवान बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं रही हो, उन्होंने जो भी अपने जीवन काल में लोगों को उपदेश दिए, जब वो सामान्य जन तक पहुंचाते हैं, तो भारत की अगर भूमिका की मैं बात करूं आपसे, किस तरह से भारत इस भूमिका को निभा रहा है?
0: देखिए, जो भारत की पारंपरिक तौर पर हम देखें तो हम अहिंसा के पुजारी हैं। अहिंसा के साथ साथ हम सबका सम्मान करते हैं। हम कहते हैं कि जो भी हमारे देश में किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी वर्ग का व्यक्ति रहे, हम सब समान है। और वही भगवान बुद्ध ने यही हमें सिखाया। उनका जो पहला उपदेश था कि जो दुख है, दुखों के बारे में उन्होंने 4 उपदेश दिए थे, और वो अगर

0: उन चार उपदेशों को मान ले, दुख को मान ले, तो मुझे लगता है कि आधे दुख तो वैसे दूर हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने सम्यक की बात की, आठ सम्यक में उन्होंने कहा, तो अगर आप आठ सम्यक को एडॉप्ट कर लेते हैं, उनको आत्मसात कर लेते हैं, तो आपके दुख तो सारे दूर हो जाते हैं। तो वही चीज, वही बातें हम उन्हीं उपदेशों को लेकर हम अपने जीवन में हमने आत्मसात कर लिया है। और जो भगवान बौद्ध को मानते हैं, जो बौद्ध देश है, वो तो इस बात को एडॉप्ट करते ही है, लेकिन अब इसको प्रचार करने की जरूरत है कि पश्चिमी देशों में, क्योंकि पश्चिमी देश अभी भी ऐसे हैं जो कि उपभोक्तावादी हैं और वो भगवान बुद्ध के जो उपदेश दिए गए हैं उन पर वो ध्यान नहीं देते हैं। तो अब हमारा, भारत की बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि बौद्ध धर्म भारत से शुरुआत हुआ, लेकिन जो बड़े देश हैं, चीन है, जापान है, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, इनकी ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं, वो ज्यादा है, उनकी संख्या ज्यादा है, तो वो भगवान बुद्ध के उपदेशों को लेकर पश्चिम तक जरूर जाएं।
1: रोशन जी, अब मतलब सारनाथ से पहले लुम्बिनी बोधगया भी यूनेस्को की सूची में शामिल हो चुके हैं। ये ऐसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जो लोगों के लिए बड़े मायने रखते हैं, लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। तो इन स्थलों को जोड़ करके क्या एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सर्किट विकसित करने की आवश्यकता है जो धार्मिक पर्यटन के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को भी एक नई दिशा दे?
0: देखिए, भारत सरकार इसमें इस तरफ काम कर रही है, बौद्ध सर्किट के लिए अभी भी है, लेकिन इसको और ज्यादा करने की जरूरत है। जो नेपाल में लुम्बिनी और उसके बाद बिहार में बौद्ध गया और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है और सारनाथ में उत्तर प्रदेश, कुशीनगर और जो सारनाथ है वो लगभग आसपास है, तो यहाँ बौद्ध सर्किट बनाने की बात है और चल भी रही है। जिस तरह से कि भारत सरकार ने रामायण सर्किट बनाया कि नेपाल से लेकर और भगवान राम के जहां जहां उनके कदम पड़े वहां वहां तक, तो रामायण सर्किट है, तो उसी तरह से बौद्ध सर्किट भी है। मुझे लगता है कि इस पर अगर और फोकस किया जाए, अब तो और भी हमारी जरूरत हो गई है, क्योंकि अब सारनाथ को जब यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल कर लिया है तो हमारी जिम्मेदारी और हो जाती है, ताकि जो दुनिया का धार्मिक पर्यटन है वो पर्यटक और हमारे देश में आए और भगवान बुद्ध के उपदेश सीखें। और पर्यटन का जब लाभ होता है तो आर्थिक तौर पर भी लाभ होता है, तो मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है इससे।
1: अगर हम सरकार के प्रयासों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इस बात का जिक्र करना जरूरी हो जाता है कि सरकार ने ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण पर बड़ा जोर दिया है। श्रोताओं की जानकारी के लिए हम ये बता दें कि मार्च 2026 तक 1,19,00,000 से अधिक पांडुलिपियों की सूचना मिलने की बात कही गई है। तो ये जो डिजिटल संरक्षण किया जा रहा है, इससे आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारी जो ज्ञान की परंपरा है उन तक पहुंचाने के लिए, या फिर जो मूल उनकी जानकारी थी, मूल जो सूचनाएं थी, मूल आदर्श हो या जो भी महत्वपूर्ण बातें रही उन तक पहुंचाने के लिए?
0: देखिए, जितनी हमारी सभ्यताएं मिली उनमें सबसे बड़ी दिक्कत थी कि उनकी भाषा, उनकी जो लिपि थी उनको पहचानना, तो लिपि को पहचानने में कई साल लगे और अभी भी हमने पूरी तरह से लिपियों को नहीं हम ढूंढ पाए। बौद्ध धर्म की जो लिपि है पाली, पाली को भी पूरी तरह से नहीं उसका हम खोज पाए हैं, लेकिन अभी तक जितना खोज पाए हैं उसके अनुसार से वो उपदेश आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये पांडुलिपि जहां जहां मिल रहे हैं और जहां जहां मिलेंगे, मुझे लगता है कि केवल ये जानकारी नहीं है, जो हमारा वर्तमान है और जो भविष्य की नीतियां बनेगी वो भी उस आधार पर बननी चाहिए, जो हमारी पीढ़ियां हैं, जो वर्तमान पीढ़ी है और हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो हमारे जो पुरातन है उससे सीखें। और इसलिए उन पांडुलिपियों के लिए सरकार ने ये मिशन चलाया है कि जो लिपियां जहां मिले उनको कैसे संरक्षित किया जाए, उनका डिजिटलीकरण किया जाए और सबसे पहले कि उसका दस्तावेज बनाया जाए।
1: रोशन जी, एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 के तहत निजी क्षेत्र, CSR और अन्य संस्थाओं को विरासत संरक्षण से जोड़ा जा रहा है, तो एक ये महत्वपूर्ण पहल कही जा सकती है। आपके विचार में क्या निजी भागीदारी से स्मारकों की सुविधाएं और प्रबंधन बेहतर हो सकता है, या फिर इसमें चीजों को और बढ़ावा देने की जरूरत है?
0: मुझे लगता है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये बहुत ही अच्छा कदम है, और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहता है कि जो भी CSR के तहत या कोई NGO अगर आना चाहता है तो हमारी जो आर्कियोलॉजिकल साइट है इन स्मारकों के आसपास आप साफ सफाई कर सकते हैं, आप यहाँ टॉयलेट बना सकते हैं, आप यहाँ सौंदर्यकरण कर सकते हैं, उनके जो पार्क है उनको मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम सारा काम सरकार के ऊपर छोड़ देंगे तो इतना पैसा, इतना धन कहां से आएगा, तो इसलिए निजी क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है। और उनके पास चूंकि CSR का पैसा होता है तो उसका अपना एक खर्चा वो वहां डालें और जो हमारी साइट है वो सुंदर भी बनेंगे और जो हमारे पर्यटक आ रहे हैं पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा कदम है और इसमें और लोगों को शामिल करने की जरूरत है।
1: व्यक्ति विशेष, कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था, कोई भी स्कूल या कॉलेज या कोई भी इस तरह का संस्थान वहां पर जाकर बात कर सकता है कि हम इसमें कुछ मदद कर सकते हैं, बल्कि यहां पर हम ये करना चाहते हैं। सौंदर्यीकरण एक अच्छा कार्य होता है, मैंने देखा है कि बहुत सारे कॉलेजेस इस काम को प्रमोट करते हैं।
0: हमारे पास NCC है, हमारे पास NSS है, इसके तहत भी हो सकता है। वैसे भी आप जाते हैं आसपास शहरों में या कहीं गांव में सफाई करते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी अगर किसी इमारत जो स्मारक है उस स्मारक को साफ सुथरा करने में अगर किया जाए तो मुझे लगता है कि वो भी एक नवाचार होगा। होगा। तो जो बिजनेसमैन है वो अपना पैसा लगा सकता है, कंपनियां हैं वो अपना पैसा लगा सकती हैं, और जो इंडिविजुअल है कोई व्यक्ति है, आपने देखा बहुत सारे लोगों का स्वभाव होता है वो सुबह सुबह जाके सफाई करते हैं,
1: जी
0: उन्होंने कचरा देखा उसको उठा लिया। तो ऐसे लोगों के ग्रुप होते हैं जो RWA है, उनको भी शामिल करना चाहिए। मुझे लगता है कि फिर गवर्नमेंट का जो सारा बर्डन, जो सारा बोझ सरकार के ऊपर पड़ता है वो कम से कम बट जाएगा।
1: रोशन जी, 2014 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ तो भारत लगभग कुल 669 पुरावशेष वापस ला चुका है। तो ये भी माना जाता है कि जो चीजें भारत से बाहर चली गई, जिन्हें चोरी किया गया या फिर किसी और तरीके से ले जाया गया, उन्हें वापस लाया जा रहा है। तो ये भारत की सांस्कृतिक संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विरासत के दावे को मजबूत करने की एक कूटनीतिक उपलब्धि है। तो सरकार के इन प्रयासों को आप क्या कहेंगे?
0: देखिए, जो कि हमारी विरासत बहुत ही समृद्ध है, और इस विरासत में हमने देखा है कि हम, जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो विदेशों से आके बहुत सारे लोगों ने यहाँ के मूर्तियां हैं, यहाँ की जो विरासत है उसकी चोरी की या उसको ले गए। तो भारत सरकार ने जब कोशिश की कि कैसे अपनी विरासत को वापस लाया जाए, और अभी जैसे आपने बताया कि करीबन 650 से ज्यादा हम ला चुके हैं, तो दो तरह से, एक तो हम अपनी सभ्यता को, अपनी विरासत को वापस लाने में सफल हुए, और दूसरा हमारा कूटनीतिक प्रयास भी तो है कि भारत सरकार ने दूसरी सरकार से, जिस देश में वो है वहां से संपर्क किया, दोनों के बीच एक संपर्क जब स्थापित हुआ और वो माने और उन्होंने दिया। क्योंकि बहुत सारे देशों, ऐसे भी हो सकते हैं जो कहें कि हम नहीं देंगे, क्योंकि वो ऐसी चीजें हैं जो 3000 साल पुराने, 4000 साल पुराने, 1000 साल पुरानी चीजें हैं, मूर्तियां हैं, तो उनका एक अपना महत्व है। तो उस महत्व को अगर हम वापस अपने देश लेके आ रहे हैं, तो हम अपने जो हमारे पीढ़ियां हैं, नई पीढ़ियां, उनको भी समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि ये चीजें हमारी विरासत इतनी समृद्ध थी।
1: रोशन जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा, और इसका उत्तर आप बड़ा संक्षेप में मुझे दें कि भारत ने बौद्ध विरासत के जो पवित्र अवशेष हैं, ये विभिन्न देशों में ले जाकर के वहां लोगों को दर्शन के लिए उपलब्ध कराए हैं, ये एक बड़ी अच्छी मुझे पहल लगती है, आप इस पर क्या कहेंगे?
0: देखिए, मुझे लगता है कि आपने धर्म का प्रचार करना है, अपने भगवान बुद्ध के देशों का प्रचार करना है, तो आपने भगवान बुद्ध से जुड़े हुए अवशेष, उनको लेकर आपको जाना पड़ेगा, तभी तो लोग समझेंगे इसमें ये क्या चीज है, कौन है, उनके बारे में सीखेंगे, और तब उस धर्म का प्रचार हो गया, उनके उपदेशों का, खासकर जो अहिंसा के बारे में उन्होंने बातें कही हैं, तो उसका प्रचार होगा। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी पहल है।
1: रोशन जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा, भारत की प्राचीन विरासत, सारनाथ की वैश्विक पहचान। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार रोशन लाल गौड़। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। कंट्री वाइड

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज भी हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से +9111230888718 और +9111230888719 पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए +9779851386007 और +9779816317 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है।

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल की सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।